0: لما تكرار كد النواني هريها كم مام بفهم مدرسون كنو دبواش إنه تو إكودين إرشاد دبو موجا ورا فريهم وانجيه إكي كودين نا دهواني إكي غوتك كنت تكورا تعليمي دائرة بلايروغا ملتيبل انتليجنسي كي أجن هنان باي كودين مثال جهادين نگاگر نفسي وانا كودين لوائكم كروان جهينا كودين مادانا گنگوسكين عملية غتن تاكتي فنيگين مهنگوس تواد غتكين هنان مي كان كان دسكود دي انگرنا دي نبوك انگه تو اهم بيما مي أغلو هم آنه كاسم تكرار كودن نواني رنگلن إرشا دبوان ف دم بسم اكودين لوائكم تتا كروي تو بلواش
1: अनुभव के लिए का अर्गुन में कोरियन में किंतु निहित तो के मामला में दमे प्रोग्राम का दमे प्रोग्राम का अर्गुन में बाइबल ने बरेंगे हियाल एवं हिमडाला ऐमा में तो के प्रोग्राम का इस अर्गुन में बाइबल ने बरेंगे हियाल हिमडाला ना
2: हित्तको के मामला में ली
3: मैं मिसाल का कोडिन्ना अदब जीने में मैं वागत की कोडिन्ना आगे का कालू में आस्तु विरांगल कुरम बेनुं वा कांता हुए मुहिम को मैं कोडिन्ना करने गए एक कोडिंग कामें नुकुरनी मैं एक ए अदबुं सलाम ऐपाम देगे आगे का कालू में मैं बेनुं वानी कोडिन्ना एक ए रांगल गोई दस कोट्टे एम विमा ए गोइंग अलू में ना ए रंगल गोए दस कोट्टे बेरुम वाका बाबन्या अलू में ना एकल एकु दिना एकुरे बोनो मिसाल का नूरंगोल कामे दिना किया दीपो एक रंगल गोए मुरा दीपो देंग एकु दिना एकल सुरसत में देनी एकु दिने एकांतर रंगल कोरा एरों एकल एकांतर दिन हर्कुमेस एकु दिने एकल रंगल एकु दिने एकांतर कुरे बे अदब दिने मम्मी वागत की दिना पहर कु दिना नुएस गेने कों कमका कमे तिमने ने अदब दिली बुनी दे एमे मेकल एकुराल में रंगल कोरा बेनुम वा कांता रंगल वो मगे पदल का एकल दें अधि एकांत दिशा से तापुरो आर भी कमोगवे स्कूडिंग एकांत निकूरनी ए लिबे आदब लोगों साल हमें काम देगे ए कामोगे ए रंगल के एकांत कोरो मगे ए मोहिम मुकं इंसान से कहने एम विमा ए अल्प में हम अवार विस्नाल जे एक हमें मिनी एम विमा एहें कम वेजिया एकुदिन नंगे कल मिनी एकुदिन लिबे आदबुन सलाम इबाम देगे एकुदिन एकांत करें एक बात होगा ए उन्न रंगल गोई ekudinna e visnaden ashage ekak paluwen deena wayesa ehema e rangalu goik ekudinna igeni asse kiya dipa lobing ekudinna muamala kon hadagen e rangalu de pone denen den anikalme ekala e rangalu kotan ekanta kuram takurar kuram beenum wakama banya ekudin rangalu kura paharu ekudinna alunna ekanta paahaka wikama e paahaka wegen alunna ekudinna ekanta ek kurige rangalu wima e tawrispes kuram man एरों कुदिन्ना मिदास्वनी इरांगला कांता कोरा आदब देगें कोरा का मवना हम आदब देश इकल ए आदबों सालामे बांगेगें कुदिन कांता कोरानी ऐहमे म कुदिन्ना का ए उन्ना रंगलों के तन्ने गेन देंग अनेक कामे बागों की आदब देख का मवना इकल ए आदब वे सेब तिहे कुच्चा बोधवों मंदावर का बोडवा ऐहनोनिया इकल ए आदब ऐहम बोडवा का मवना एकुदिन्ना ए आदब ए उत्तम एलिबे आदब का
4: Emang ekudin na daswani, khususnya mahal juga masa ke kurang. Emi mah, ehi, gua takkan bisa ngalor gua takkan makan sengalor gua takkan boleh nukurang. Ane ekudin nang adabudi, ekudin nang ania aku mihing kantuk tak kurungaki. Nasehat dia geng ekudin na ranggalu goi, tiadi kantuk tak kongen nuni. Emi ranggalu goi sengalor gua makan sengalor gua. Emi mah, agunda takjiri bayi ngalagunda niki gua taki ekudin na nuruhi geng eveswaha ke dia geng adabit dakkaya geng. Kurungnya beserah keragalo kami nungkam. Bagaimana punya kurung hama, ekudin nang hama ragalo berciri adi fa. Kapu punya nukup si kemawannya, ega ragalo gota ki niye. Ekudin nang beser, kapu punya kurewe gota. Eki kahaja kulidor kahaja nama sece mudakka ageng ragalo. Ekudin ni kamo nduruheli kurewe kahaja gota ka. Ingin hama nujie ageng bagaimana kurung orang sese. Saja kang, kami kujak kusunna ne, kujak je daerah kujak ingin hama jehe kami. Ekan tak misalnya kang benam benda ne gadi.

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরআফ হবে আলা ওয়া ইন্নী উতীতুল কুরআন ওয়া মিছলুহু মা মানে দন্নাশে আদি হামাকাশওয়ারুম তিমান রাসূলা ইবানি কুরআন দেবি ফাইব আদি ইয়াইক হাম ইফাদা এহেন এচবস দেবি এবহি একালে গফানগে সুন্নতে
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಇರೋಸಿ ಹಗಡಿ ಸಾದ ಮಿನಟುಗ ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದವಾಗುತ್ತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್